0: थैंक यू सो मच।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: दिल्लू एपिटल लॉ राइट हियर ऑन बिग 106.2। ट्रैफिक का कितना एक खौफ सा है यहाँ पर यूएई में ना।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: I'll tell you what I mean, kids just tuned in. Aaj se show is going to be from 7 to 11 instead of 6 to 10. Yeah, so the first thought that I had in my mind is, oh, wow, what a sigh of relief because I can sleep for one more hour. Ek extra hour neend. Kisko buri lagti hai, yaar. Lekin phir the immediate, एकदम नेक्स्ट थॉट ये था कि यार ट्रैफिक कितना मिलेगा सुबह। नहीं, जब मैं 5:15 बजे घर से निकलता हूँ वैसे 6:15 जमीन आसमान का देना। आस्क्ड अ फ्यू पीपल कि माहौल कैसा होता है यार, यू लीव एट अराउंड 6:15 एटसेट्रा। दे लाइक नहीं नहीं भाई भूल जा, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे लाइफ में इतना कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, हैं? सो ज़्यादा उछल मत बिकॉज ट्रैफिक उतना ही मिलेगा, निकलना तो तुमको उतने टाइम। यार सीरियसली, सो देन मैं डरते डरते सुबह निकला एंड देयर इज दैट भयंकर वाला एक ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पर मुझे सुबह 5:15 बजे भी 6 मिनट रुकना पड़ता है। सो आई वाज लाइक यार 6:30 बजे इट्स गोना बी लाइक डबल, सो लेट मी लाइक टेक एन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स एंड देन लीव। बट देन ऑल्स वेल दैट। अच्छा, एक और ख्याल था कि पहुँच तो जाऊँगा लेकिन उसके बाद पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी और इज गोना बी लाइक जैम पैक फुल। सो या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई देयर वाज वेरी लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड्स एंड देन पार्किंग भी मुझे मिल गई। आई डोंट वॉन्ट टू जिंक्स इट, नीदर शुड यू। इज देयर सम लाइक टर्किश इविल आई वर्जन ऑफ डूइंग द रेडियो। थैंक यू वेरी मच मैंडी फॉर योर मैसेज ऑन आर व्हाट्सएप नंबर 0543091062। दैट्स अ नंबर दैट यू कैन यूज टू व्हाट्सएप मी, गेट इन टच विद मी 0543091062। हियर्स टू न्यू बिगिनिंग सेज मैंडी, कांग्रेचुलेशंस सिड, थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक योर कांग्रेचुलेशंस, सो नाइस ऑफ यू टू मैसेज, इट्स योर एनकरेजमेंट दैट कीप्स अस गोइंग। फिलहाल हाउ डिड यू स्पेंड द वीकेंड, कुछ अगर धांसू किया हो, समथिंग मेमोरेबल, लेट नो, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। अ फिल्म केम आउट कॉल्ड डू डाई डू। Why I love that name is because it's the literal Hindi translation of Do Die Do ko kariye. It's the Marathi surname of Karmarkar. So yeah, Do Die Do kabhi review karne wale hain. And of course, Alpha ki baate karenge. There's so much coming up on the show. Chance hi nahi hai that you can tune off from Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलरस कहाँ है, कहाँ है अलरस?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलरस।
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार, अपना फ्यूचर।
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsurersMarket.ae.
8: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: आजकल मार्केट में सिर्फ दो ही सवाल बड़े वाले चल रहे हैं. एक तो इज दिस गोइंग टू बी मेसीज लास्ट वर्ल्ड कप, एंड द अदर इज दिस गोइंग टू बी आमिर खान्स लास्ट वेडिंग.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: नहीं, आई डोंट मीन to be rude. 8:10, but it was a very intimate wedding in Bandra in his own home. उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यार कोई ज़्यादा धूमधाम नहीं होगा, जैसी मेरी फिल्में होती हैं वैसी. बड़ी you know, it's like a मेरी director's cut type का एक art film type की wedding, but very nice background the nature decided to kind of add to, because monsoon wedding अपने आप ही बन गई. The monsoons काफ़ी बारिश हो रही है मुंबई में, and that's what kind of turned into a bit of a monsoon wedding. Very nice cute moments. मतलब can a Bollywood wedding actually be intimate anymore? क्योंकि इतने सारे videos हमने already देख लिए हैं. हमें पता है आमिर की तरह, हमें भी पता है कि इनकी शादी में, आमिर खान की शादी में कौन आया. ईरा खान, जुनेद खान, ऑफकोर्स हिज चिल्ड्रन, प्रसून जोशी, वीरदास, एलिया अवराम, इरफान पठान, मुकेश अंबानी, दे वर ऑल देयर. बट टू पीपल हु वी वुड सी वर नॉट देयर येट, शाहरुख खान एंड सलमान भाई दोनों नहीं थे वहां पर. बट हो सकता है कि बाद में चल के कोई यू नो रिसेप्शन टाइप का कोई इवेंट वो रखें जिसमें कि वो हो. बट the thought was that they're pretty close, right? So shouldn't they have been there? I don't like kind of add to what people are already saying, but a cute moment ye tha ki Gauri's son, I mean Aamir Khan's wife's son Quinn, and Aamir's son Azad Rao Khan, they were actually part of the ceremony as ring bearers. So nice cute moments out there. Kuch naach gaana bhi wahan par hua, Aamir Khan ne kiya with Gauri's pride as well. So yeah, congratulations to Aamir Khan. Once again, this is The Big Breakfast with me, Sid, coming up in just a short while. Big summer surprises. Keep it locked.

0: The beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: With Big Ticket this summer, every ticket could spin big.
3: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
2: Our new big spin game could land you up to 1 million dirhams.
3: And 5 consolation prize winners of 100,000 dirham each.
2: Plus weekly cash e-draws all through the month.
3: Summer's hottest prizes await.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order 2 or more eligible items for 25 dirhams each and receive 1 collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
6: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
7: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
6: अलरास बोले तो
7: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
6: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: मॉर्निंग पीक का 8:15 ऑन दिस मंडे मॉर्निंग एंड Dubai's forecast climbs to around 41 degrees Celsius by midday today. So, yep, that is the big weather news. 34 degrees Celsius right now. Filhal, humidity at 50%. Winds blowing at 14 kilometers per hour. Highs of 36 right now. Lows of 32 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number 1 auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: I'll tell you which is the most khara sauda. It is a big summer surprise.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: You know, best part is ke har hafte hum log kuch naya lekar aate hain aapke liye. There's a new contest every single week. The mechanics are refreshed every single week. So, because it's the start of a brand new week, aaj 6th of July, Monday ki subah, is hafte hum kya khel rahe hain?
1: Participate in the Spell Battle Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almired Ras Al Khaimah.
0: स्पेलिंग के नाम से अगर आपको बुखार आ जाता है, डोंट वरी, यू नॉट द ओनली वन. ज्यादा मुश्किल सवाल मैं नहीं पूछूंगा आपसे, बट या टू पीपल ऑन द फोन लाइन, दैट रिमेन्स द सेम, प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. एंड स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट में जितने ज्यादा स्पेलिंग्स के करेक्ट आंसर मुझे दिए, उतने ज्यादा चांसेस कि उनका नाम ड्रॉ के अंदर चला जाएगा टू विन दिस अमेजिंग अनमिसेबल स्टेकेशन एट द फैबुलस रिक्सॉस अलमायरेड इन रसल खैमा इन द बिग समर सरप्राइजेस. तो क्या करना है आपको, कीप व्हाट्सएपिंग, डू नॉट स्टॉप, इट इज फ्री. 0543091062, दैट्स द नंबर यू कैन WhatsApp. क्या करना है आपको, टाइप करना है BSS for Big Summer Surprises, BSS space देकर अपना नाम, and keep WhatsApping that as many WhatsApps as you possibly can to 0543091062. In just about less than an hour, we are going to play the spell battle in the Big Summer Surprises. Coming up. और हाँ, ऑन द स्पॉट दो वॉक्स वाउचर्स एंड एक F&B वाउचर तो आप जीत ही सकते हैं. साथ में आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा टू विन दिस फैबुलस स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरेड इन रसल खैमा. सो कीप व्हाट्सएपिंग BSS स्पेस योर नेम टू 0543091062 इन द बिग

0: फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज दैट इज वारी जावा राइट ऑन बिग 106.2। यहां पर तो बहुत सारी चीजें हम लोग करते ही रहते हैं ऑन द रेडियो, जिससे कि आप कहें मैं वारी जावा, बट ऑन सोशल मीडिया एज वेल 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर सोशल हैंडल।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: We are 9 episodes down with this new feature called Sidcom, and every single Sunday I come up with a particular recommendation of comedies, because kya hai na ki duniya mein waise hi kafi tension chal raha hai. The one thing that I really believe in is the world needs more comedies. They can be mindless also, लेकिन वो जो दिमाग घर पे छोड़ के फिल्म पे जाके देखो वाली जो कॉमेडी होती है ना, दैट होल जॉनर, वी नीड मोर ऑफ दैट। या सो कुछ हिडन जेम्स के बारे में बात करता हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड कॉमेडी, दैट इज व्हाई सिटकॉम नहीं, इट इज कॉल्ड सिडकॉम। एंड दिस वीक्स फिल्म इन फोकस वॉज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट इरफान खान मूवीज, इट कॉल्ड करीब करीब सिंगर। इसके बारे में कुछ यूजफुल एंड यूजलेस ट्रिविया एंड व्हाई यू शुड बी वॉचिंग दिस फिल्म, इफ यू हैवंट यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम। एंड दिस इज सॉन्ग इज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल।
2: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा कर।
0: गुलाब व्हाट अ सक्सेस स्टोरी संजू राठौर की है। Made this song just as time passed, then it became Instagram ka rage, and now it's featured in Dhamal 4, yeah. So wow, if there is one dreams can come true story, it is Sanju Rathod. But iska bilkul opposite hai Prithvi Shaw. We need to talk about Prithvi Shaw and what's happened with him in the recent past, yeah. Batata humko kya hua in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast, brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
2: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: गुड मॉर्निंग, 8:40 ऑन द क्लॉक. लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट द कैपिटल अबू धाबी. यहाँ पर आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा एट मुस्तफा इंडस्ट्रियल E30 एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स रमदान. देन E22 पर गोइंग टुवर्ड्स शेख जायद ग्रैंड मॉस्क हेडिंग वेस्ट यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. आज ईस्टर्न मैंग्रोव्स पे भी E10 यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन जोन 1 के आसपास. चलते हैं भाई शारजा की ओर. 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यूजुअल हॉटस्पॉट पे आपको ट्रैफिक मिलेगा 7 से 9 मिनट की देर. देन देयर इज इंडस्ट्रियल एरिया 6 की जो सड़कें हैं यहाँ पर इन बोथ डायरेक्शंस ईस्ट एंड वेस्ट यू फाइंड कंजेशन. 62 पर विच इज बेरूत स्ट्रीट राइट आउटसाइड मदीना मॉल. देन E11 पर हेडिंग साउथ डेरा के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा. आज डेरा क्लॉक टावर एरिया is more congested than usual. E11 Trade Center roundabout, Sheikh Zayed Road heading south, also you'll find traffic. 44 Al Khair Road per going towards Business Bay, and then 611 per heading south going towards Alavir is also getting just a bit busy.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आज सुबह के लिए बिग समर सरप्राइजेस की गली बिच अब बस नो एंट्री. इट इज टाइम टू प्ले द स्पेल बैटल.
1: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Right, I've got two contestants ready with me on the phone line. Sabse pehle, let's say good morning to Tariq. Tariq, how are you doing?
2: I am fine.
0: अरे बाप रे यार, बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो यार. इट्स नॉट रियली द मंडे मॉर्निंग यू आर लुकिंग फॉर.
2: नर्वस हो
0: भाई. मतलब जितने कॉर्पोरेट तरीके से आपने मेरे को पूछा सुबह, मतलब मुझे तो मजा ही आ गया सुन के यार. हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, इज देयर एनी स्पॉट अवेलेबल फॉर द स्पेल कॉर्नर? जबरदस्त. क्या काम करते हो यार तारिक?
2: नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ.
0: आप स्टूडेंट हो?
2: जी.
0: ओ, क्या पढ़ रहे हो?
2: अभी रिसेंटली बस ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी.
0: सो व्हाट्स योर स्पेशलिटी? व्हाट आर यू स्टडीइंग?
2: सीए.
0: यू डूइंग? ओहो, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. आई मीन, आई थिंक लेट्स सी व्हाट जय हैज टू से अबाउट दैट. जय, गुड मॉर्निंग.
3: मॉर्निंग.
0: यू कैन नॉट से जय इन अ नॉन धर्मेंद्र. जय, कैसे हो जय? जय, जय, आर यू अ सीए? डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दैट फील्ड, और आर यू इनटू कॉमर्स?
3: आई एम एक्चुअली इनटू मार्केटिंग.
0: यू आर इनटू मार्केटिंग. कभी कभी सोची थी सीए करने की, कभी छोड़ दिया, कभी कुछ
3: सोचा था. आई एक्चुअली, या आई डिड माय बैचलर्स इन फाइनेंस, उसके बाद मैंने छोड़ दिया.
0: क्यों छोड़ दिया? कंपटीशन कुछ ज्यादा ही था या स्ट्रेस ज्यादा ही?
3: स्ट्रेस ज्यादा है बहुत.
0: सो टेल तारिक व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट. के हाउ डू यू मैनेज एक्सपेक्टेशंस यार? हां,
3: तारिक, आई थिंक ही इज स्टिल यंग, ही इज स्टडीइंग, सो स्टिल अ लॉट to look forward to. Or it's a good field though.
0: Yeah.
3: So I'm sure he'll do well.
0: हाँ, अब कैसे इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो आपके छोड़ दे तारीख यार? इतना स्ट्रेस इज नॉट वर्थ इट इन लाइफ. ऐसा बोल मत देना, ठीक है? बट इट्स गोना बी तारिक वर्सेस जय. ओके, हियर्स व्हाट्स गोना हैपन इन द स्पेल बैटल. आई एम गोना गिव यू अ वर्ड, ठीक है? एंड यू गोना टेल मी द स्पेलिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन दीज वर्ड्स हैव समथिंग टू डू विद अ वेकेशन. Because you have a chance to win an amazing staycation at the Rixos Almirid in Ras Al Khaimah, right? So, ये words में कुछ ना कुछ vacation, staycation, छुट्टी से related ही ये words होंगे, okay?
3: Okay.
2: Okay.
0: Now, in case आपको लगता है कि you know the spelling, you got to use your name like a buzzer. So, say Big Tariq or Big Jay. Is that clear?
2: Okay.
0: And once you've said that, once I verified कि किसने अपना नाम पहले चिल्लाया, उसको मैं मौका दूंगा आंसर करने का, and then give me the answer. If your answer is correct, you get one point. Is that clear?
2: Okay.
3: Yeah.
0: So let's do a bit of a buzzer test. Ready? 3, 2, 1, go.
3: Big J.
0: Tariq, you got to be faster than that, huh?
2: Okay, then.
0: Right. थोड़ी nervousness को निकालो और घोटा बना के बाहर फेंक दो खिड़की से, ठीक है? It's not the time to be nervous. Nervous होना अपने क्या foundation, CA foundation के time पे. अभी ये तो मतलब मस्ती मजाक चल रहा है यार. All right, तारिक, जय, रेडी गाइज? एनी डाउट्स? कोई डाउट?
3: रेडी, रेडी.
0: हाँ, ठीक है, चलो, रेडी. सबसे पहला वर्ड, हु कैन टेल मी द स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेशन?
3: बिग जे.
0: बिग जे.
3: ए सी सी ओ एम ओ डी ए टी आई ओ एन.
0: Tariq, do you think it is correct? Do you think it is wrong? Do you want to take a shot at it? What do you think? Accommodation.
2: I think it's correct.
0: You think it is correct?
2: Yeah.
0: It is actually the wrong answer, Jay.
2: Oh, no.
0: It is, there's a double M. Double M. A-double-C-O-double-O-double-M. Double O bol diya maine. Meri to waisi dabba gul hai spelling mein. Chalo, next. All right. Ready, guys? The really? Next word is, who can tell me the spelling of trekking?
3: Big J.
0: Big J. Go for it.
2: T-R-E-K-K-I-N-G.
0: Is the correct answer. 1-0 in favor of Jay. Ooh. Jay, if you get the next one, your name goes into the draw. All right, buck up, Tariq.
2: Okay.
0: The
2: okay.
0: Next word is souvenir.
2: Big Tariq.
0: Big Tariq.
2: Yes.
0: बोलिए.
2: S O U V E N R.
0: अरे क्या बात है! It's gonna go down to the wire now. It's a tie breaker. Jay versus Tariq. They've got 1-1. It's almost like a Norway versus England का quarterfinals of the World Cup. But let's see कि कौन बाजी मारता है. एक ही वर्ड में पूछने वाला हूँ. Be quick on the buzzer. Are you guys ready? This is the tie breaker.
2: Okay.
0: And your word is adventure.
2: Big Tariq.
0: Big Tariq, I heard your name first. Go for it.
2: A-D-V-E-N-T-U-R-E.
0: Is the correct answer. And Tariq Beg, coming back from behind, coming back from 1-0 down. He has actually scored a penalty in the 98th minute. Oh my God, Tariq. Wow.
2: Yes.
0: इतनी एनर्जी दिखा रहा हूँ मैं सामने से, आप सारे के सारे ना बिल्कुल अच्छे डिफेंडर की तरह उसको डिफेंड करे जा रहे हो. बट जय, थैंक यू सो मच. आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी बट एंड में जाकर तारिक ने बाजी मार ली. बट थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू यार जय.
2: नो वरीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच.
0: एंड तारिक, हाउ आर यू फीलिंग? सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आपने क्या क्या जीता है. ऑन द स्पॉट आपने जीते 2 वॉक्स टिकट्स प्लस एन एफएनबी वाउचर इन द बिग समर सरप्राइजेस प्लस योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ टू विन एन अमेजिंग स्टेकेशन एट द रिसॉर्स अल मायरेड इन रसल खेमा. कांग्रेचुलेशंस.
2: Thank you so much.
0: Oof. How are you feeling? Tell me how badly you need this staycation right now.
2: Like,
0: मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? ये हिंदी स्टेशन ही है, वो तो मैं स्टाइल मारने के लिए इंग्लिश बोलता रहता हूँ.
2: एक्चुअली मैं अभी बहुत खुश हूँ क्यों, समर वेकेशन भी स्टार्ट हुआ तो फैमिली के साथ भी जाने का मौका मिलेगा मुझे. एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ये मौका भी मिला इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए. एंड थैंक यू सो मच कि मुझे सेलेक्ट करने के लिए आप सुबह सुबह मेरे मैसेज देखे.
0: थैंक यू फॉर मैसेजिंग. एंड तारिक, कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग सो मच एंड योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू कि आपका नाम ड्रॉ में से निकले. लेकिन इन द मीनवाइल हम सब की तरफ से जोक्स अपार्ट, भाई सीए की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है. ऑल द बेस्ट. All the people listening in right now, उन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, Big 106.2, all the best for the future.
2: Thank you so much.
0: Take care. That is Tariq, हमारे आज के draw entrant हैं, आज के हमारे winner हैं of so much. You know, this is the big summer surprises. You got to get your name into the draw, right, to win this unmissable staycation at the Rixos Almirit in Russell Khema. BSS space देकर अपना नाम, बस इतना ही काम करना है आपको. Type कीजिए BSS for big summer surprises, space your name and keep sending it, keep WhatsApping it to 0543091062. It's a WhatsApp contest. SMSs are not allowed. So 0543091062. That's the number. Big summer surprises has been made possible by our presenting sponsors, Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirit Russell Khema. And don't forget, kal subah ek bar phir on the show, that has now become 7 to 11 by the way, 6 to 10 nahin, 7 to 11 is the big breakfast. Kal subah ek bar phir ye mauka aapke paas, and one more of you are going to get shortlisted in the lucky draw to win movie tickets, FMB voucher, and get your name into the draw. Brother!

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: You know, there are so many things that I used to judge people on when I was not a parent, and wahi sab cheez, all those things have come back to bite me when I've turned into a parent myself.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: All the parents out there, bachcha party ke parents, if you've got a formula that you've cracked for designing a bachcho ki birthday or planning a bachcho ki birthday party, then please give me a call, let me know, and be my expert for the day. 800-1062 is my number. Because yaar, itni mehnat lagti hai, it is not even funny. Like planning a bachcho ki birthday party ke kya अलग किया जाए, और फिर ये भी होता है ना प्रेशर है कि क्लास में औरों ने क्या किया, तो वो लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड देन उस लेवल की एक पार्टी आपको देनी पड़ेगी, एंड देन यू रियली एंड अप मिसिंग योर ओन डेज, जिसमें वो जेम्स वाला एक यू नो पाइनएप्पल पेस्ट्री एंड कुछ वो प्लास्टिक बैग, नॉट इवन ब्रांडेड वाले, वो जो छुट्टक, हम लोग तो छुट्टक वेफर्स एंड एक चटनी सैंडविच देकर काम खत्म हो सकता था. एंड इवन इफ यू डिडंट हैव बजट फॉर द केक, लाइक जस्ट गेट अ लाइक अ कपकेक एंड दैट्स अबाउट इट. आजकल तो ओ माय गॉड, इट इज क्वाइट इनसेन. यू गॉट टू कम अप विद अ न्यू लोकेशन, एक वेन्यू जहां पर ऐसी एक्टिविटी प्लान करो जो नहीं की है, एंड देन वहां पर पहुंचते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, तो बच्चों को मैनेज करना, ओ वाओ यार, आई मीन दो घंटों में, इट्स यूजुअली 5 to 7 राइट, सो दो घंटों में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का marathon, it feels like you've run a marathon in those 2 hours. Yeah, I mean, with all due respect, yeah. So big respect for all the parents like me who are like kind of planning birthday parties. If you got it all planned out, agar aapne crack kar liya hai the code, please give me a call, let me know. 800-1062 per. But talking about bachcha party, they are going to love this, not just bachcha party, but yeah, I got a call. Let's take somebody on the phone line. Hello, good morning. Hi, this is Sid from Big FM. Kaun bol raha hai?
2: Hi, this is Sana.
1: Sana, please. Wow, you are actually confident about cracking the code for bachcho ki birthday party. Yaar, yeah. Ye hoti hai confidence here on a Monday. Batao, kya karte ho aap?
2: Just plan it in advance.
1: Wow.
2: Tell the kids to invite other kids. The news reaches, make invites, Canva. Very simple. Get food ordered.
1: अरे ये तो ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गया, बट व्हाट अबाउट द प्रेशर कि भी औरों ने क्या किया है बर्थडे पार्टी में, देन आई हैव गॉट टू लाइक मैच दैट लेवल, ऐसा सब नहीं करते होता आपके साथ?
2: सब बच्चे कर देते हैं.
1: अच्छा,
2: वंस द इनवाइट इज रेडी, दे स्नैपचैट, दे गिव यू फूड रिकमेंडेशंस, दे टेल यू अरे मेरे पार्टी में ऐसे था, एंड देन गेट दिस, एंड दिस इज ट्रेंडिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी द थीम.
1: So what you're saying is कि आजकल पेरेंट्स का ज्यादा से ही नहीं है इसके अंदर, मतलब the बच्चे ही अपनी खुद की बर्थडे की प्लानिंग. अच्छा, ये करो, सिर्फ पैसे ढीले करो, that's what the बच्चे से basically saying.
2: Yes, just make a Canva invite ready, and you will get recommendations from the kids by the kids.
1: A question, why don't the kids just make the thing on Canva themselves then? Why do we have to do even that?
2: No, because they add different themes and some people like it, some people don't like it. So keep it simple like a millennial.
1: Okay, so they want to be in the director's chair. राइट, कि आप सारे जो मीनियल्स हैं मेरे पेरेंट्स, आप पहले एक वो बनाओ इनविटेशन, उसके बाद हम जज करेगा. हाँ, तुम साला गुलाम. इस तरह का माहौल हो रहा है. हाउ ओल्ड आर योर किड्स सना? वेरी क्यूरियस टू नो.
2: माय डॉटर इज 11.
1: वाओ, सो शी इज इन 6th ग्रेड नाउ. हां,
2: यस.
1: चलो, वेरी गुड यार, एटलीस्ट देयर आर सम वेरी कॉन्फिडेंट पेरेंट्स आउट देयर हु काइंड ऑफ क्रैक द कोड. एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. मतलब माय किड इज 2 इयर्स ओल्ड एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग द स्ट्रेस, बट इट्स गुड टू नो के देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.
2: Thank you.
1: Sana कह रही है कि just leave everything and outsource it, you know, to your kids. That's the good way out. We're talking about kids. Papa John's and Toy Story 5 pizzas have landed, bringing movie-inspired flavors to your next meal. You can try the Space Ranger Ronnie, loaded with double pepperoni for a bold, meaty bite. Round up your appetite with the Sheriff's Roundup, topped with barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy a delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any 2 or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:08।
1: बॉलीवुड

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: आज दोपहर 12 बजे तक 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा. दैट इज व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड फॉर दिस डे, फॉर दिस मंडे. 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 47%, हाईज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
1: It's time for the big Bollywood quiz right here on Big 106.2.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज मैं आपको एक ऐसा सीन सुनाने वाला हूँ, विच इज लाइक मतलब टोटल LOL प्रो मैक्स ROFL वाला ये सीन है. इस सीन का फॉरगेट अबाउट मूवी, ये सीन की खुद की एक कल्ट फॉलोइंग है, उसकी एक खुद की एक फैन फॉलोइंग है. पीपल नो द सीन, बट द क्वेश्चन इज डू यू नो द मूवी. ओके, इसको सुनिए, बताइए ऑल दी स्पेशली ऑल दी आर्किटेक्ट्स आउट देयर, डू यू नो व्हाट फिल्म दिस सीन बिलोंग्स टू.
3: तो तुम भी आर्किटेक्ट हो.
4: तुम भी आर्किटेक्ट, मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है?
5: एक्चुअली संजीव भी आर्किटेक्ट है.
4: अच्छा, आप भी आर्किटेक्ट है. नाइस, वेरी नाइस. प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है?
3: कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की?
4: वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो?
5: ऑक्सफोर्ड.
4: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी.
3: ऑक्सफोर्ड,
4: या.
3: और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए आपने?
4: मैंने ताजमहल.
6: ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया?
4: नहीं, ताजमहल होटल मुंबई.
3: ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया?
1: हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस गाय, यस, उन्होंने बनाया है. कौन सी फिल्म में ये सीन था? अनमिसेबल, आई मीन इट इज अनफॉरगेटेबल सीन, बट यू नो द मूवी का नाम. इफ यू डू, देन टू ओपन मूवी टिकट्स आपके पास जीतने का मौका इन द बिग बॉलीवुड क्विज. कॉल कीजिए 800-1062. इट्स अ कॉल इन कॉन्टेस्ट. 800-1062 पे कॉल करके बताओ ये आर्किटेक्चर वाला और फॉर आर्किटेक्चर वाला सीन कौन सी फिल्म का था. नंबर इज 800-1062. यस, अरिजीत सिंह. He doesn't know the correct answer. He says, "Haan, main galat."

0: 93.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning. Come on. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
1: Mugembo! खुश हुआ
2: क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है पवन आजकल
3: आजकल टैन इन ऑयल सैंपल जो इंजन ऑयल
2: कुछ कुछ समझ नहीं आया ये कुछ अच्छा बताओ इंटरेस्टिंग कुछ मन से बना के बता दो जिंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बताओ
3: जंपिंग चलो यहाँ घूमो वो घूमो कस्टमर के पास जाओ
2: लव लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है
3: हाउ आर यू
2: आई एम गुड हाँ आई एम वेरी गुड मेरी लव लाइफ तो एकदम जीरो है नील बटे सन्नाटा आपकी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है सेम टू यू क्या मतलब सेम टू यू मतलब आपके साथ वो हो आपके साथ हो क्या रहा है
3: नथिंग आई जस्ट केम यू वन ईयर बिफोर ओनली
2: ओह सो आर यू लुकिंग फॉर अ गर्ल
3: या यस्टरडे आई सॉ योर डीपी यू नो फर्स्ट टाइम आई टॉक्ड विद यू एंड देन आई सर्च्ड 106.2 देन आई गॉट टू नो माय गॉड मानसी लुक्स पीटी
2: तो क्या आप मुझे ये हिंट दे रहे हो कि मेरी जैसी लड़की आपको चाहिए आपकी जिंदगी ऐसा एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आप फिर बोलोगे मैं कहाँ फंस गया
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It's 10:27 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the hotspot आज सुबह का that is E11 Trade Center roundabout पे जो traffic था अब वो it's getting much much better सिर्फ 2-3 मिनट की देर बच गई है heading south on Sheikh Zayed Road D75 पर भी things are looking much better heading towards Dubai Frame and Sheikh Rashid Street की मैं बात कर रहा हूँ then there is business bay की internal सड़कों पे तो रोज की तरह traffic है ही D71 is also looking a bit better right outside Dubai Mall 2-3 मिनट की देर आपको मिलेगी E44 Alkhel Road going towards business bay and And then the usual 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. At the usual hotspots, you'll find anywhere between 5 to 7 minutes ka delay. Still a bit of congestion, Beirut Street per right outside Medina Mall heading south. Then there's a bit of congestion S116 Malia Street per and this is going towards 611 Emirates Road.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: अरे को है क्या
6: काटेगी क्या

0: Sony Dena Kare right here on Big 106.2. It's time to declare the winner of the Big Bollywood Quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: On the phone line, mere saath Ronak. Good morning. How are you doing?
2: I'm good. How are you, Sid?
0: एक सवाल पूछूं, ऑनेस्टली जवाब देना, ठीक है?
2: Yes, yes, please.
0: इस वक्त जब मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा और मुझे रौनक का सीवी मिलेगा वहां पर, तो इस सीवी में सच बताओ, हैंड ऑन हार्ट, तुमने कितना झूठ बोला है?
2: हैंड ऑन हार्ट, 5-7%.
0: 5-7% ऑनेस्टी के फुल मार्क्स रौनक को. And what is the one section in the resume or CV जहां पर लोग ज्यादा लिबर्टी लेते हैं कि यार यहां पे मैं थोड़ा सा फेंक दूं ना तो भी चलेगा, क्या कहते हैं?
2: हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ता है, बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड एंड मूव फर्दर. ग्रोथ देख रहे हो आप, जिस पोजीशन के लिए आप देख रहे हो वो प्रेजेंट पोजीशन से थोड़ी अबव है, तो उसके लिए, उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना ही पड़ता है.
0: हाँ, 10 चीजें अगर उन्होंने मांगी हैं आपके पास, 8 चीजें देने के लिए, तो आपने कहा चलो 2 भी मैं डाल देता हूं अपने मन से, बाद में सीख लूंगा. मतलब, और लोग तो बहुत बंडल मारते हैं, आप तो सिर्फ 5-7% की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो और थोड़ा ज्यादा ही होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा मेरे को उसके अंदर. अकाउंट्स में हो आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि यू वुड बी वेरी गुड इन सेल्स ऑल्सो, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मेरे को.
2: नहीं,
0: मेरे को तो डेस्क के पीछे बैठने का, मेरे को जाने का ही नहीं है, इतनी गर्मी में कौन घूमेगा भाई.
2: Yes, exactly. Better with finance.
0: एसी में बैसवानो, जूस पीवानो, मजा नहीं, लाइफ रानी तो पप्पा नहीं. चलो भाई, चलो
2: exactly.
0: एक हम लोग, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मिस्टर अकाउंटेंट. लास्ट टाइम मैंने, हाँ भाई, भाई अभी टॉकिंग अबाउट सीवीज एंड रेज्यूमेज एंड यू नो बंडल मारना, बिकॉज एक भाई साहब ने, भाई साहब का नाम अक्षय कुमार है, इन्होंने एक कोर्स किया था, जब उनसे पूछा गया इस फिल्म में, इस कोर्स का नाम था ITUS. उनसे पूछा कि आपने क्या कोर्स किया है, तो कहता ITUS. तो पिछला सवाल तो आपने बिल्कुल सही छक्का मारा, लेकिन बताओ इस फिल्म में ITUS का फुल फॉर्म क्या था?
2: इसकी दो थी उसके सर.
0: भाई यू आर लाइक अ प्रॉपर, ये रौनक, रौनक नाम का अकाउंटेंट अगर आपके कंपनी में है तो मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा दिन भर आपको लगता है कि

0: काम कर रहा है, लेकिन ये मूवीज देख रहा है भाई, ये पिक्चरें देख रहा है।
1: मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड क्रेज हूँ, यू नो, वेरी मच बॉलीवुड बाप्पा है।
0: सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ परसेंटेजेस, रोनक, टेल मी हैंड ऑन हार्ट वंस अगेन कि दिन के 9 घंटे में से आप ऑफिस में कितना टाइम मूवीज देखते हो?
1: ऑफिस में मूवीज नहीं देख पाता, बट या सोशल इंस्टाग्राम और रील्स, यूट्यूब, ये चलता रहता है।
0: वेरी गुड,
1: पार्ट बिट्स एंड पीसेस में।
0: अगर आपकी कंपनी में रौनक नाम का एक अकाउंटेंट है, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट गाय अराउंड, लेट मी टेल यू दैट, बट कांग्रेचुलेशंस रौनक, यू जस्ट वन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज।
1: थैंक यू वेरी मच
0: बिकॉज आई आस्क्ड यू टू क्वेश्चंस, आई फील लाइक गिविंग यू 4, बट मगर अफसोस मैं आपको 2 ही दे पाऊंगा। चलो एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवी, ओके?
1: थैंक्स अ लॉट, थैंक यू
0: रौनक। आई मीन ही इज द, अच्छा बाय द वे, अरे जवाब तो पूछा ही नहीं मैंने।
1: आप जो क्वेश्चन में जवाब दे रहे
0: हो, सही जवाब कैसे? बट रौनक तो भाई आखिर रौनक है, उन्होंने बिल्कुल तक्का मारा। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट। रौनक हमारे आज के विनर। डोंट फॉरगेट, रोज सुबह है मौका फॉर यू टू गेट योर हैंड्स ऑन दीज 2 ओपन मूवी टिकट्स, फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल इन द बिग बॉलीवुड क्विज।
2: Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: My
1: God. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, मतलब फीफा वर्ल्ड कप को लेकर. डू यू, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? आई एम गोना पुट अप अ पोल क्वेश्चन अबाउट दिस इन जस्ट अ व्हाइल ऑन 106.2 बिग एफएम. दैट्स आवर इंस्टा हैंडल.
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: एंड द क्वेश्चन इज दिस, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा? आई मीन, एंड योर ऑप्शंस आर, इज इट गोना बी अ टीम दैट विंस द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? Or is it going to be a team that has won the World Cup before? Let me explain. I mean, first time ki list mein kaun kaun aata hai? Portugal. Think Cristiano Ronaldo. They've never won before. Norway, of course, has not won it before. Or do you think a team that has won before? For example, England ne ek baar jeeta hai in the 60s, 66 or something like that. And or Argentina, of course, has won it a few times. They are still in the race. Brazil is out now. So makes this question even more, you know, interesting for you to answer. कि क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. यू कैन हेड आउट टू आवर इंस्टा. वंस अगेन आवर हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. वहां पर आपको बहुत कुछ मिलता है टू टेक पार्ट इन एंड डू सम टाइम पास, सम इंफरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन ट्रस्ट एंड अमेजिंग एंटरटेनमेंट एज वेल. सो दैट्स आवर हैंडल 106.2 बिग एफएम. ऑन दैट नोट, आई एम गोना बी टेकिंग योर लीव. आई एम गोना अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ दिस पोल टुमारो एज वेल, कल सुबह. एंड द टाइम्स हैव चेंज्ड, आप जानते हैं. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरली टाइम्स हैव चेंज्ड, वैसा नहीं, बट ये हमारे शो के टाइम्स हैव चेंज्ड. इंस्टेड ऑफ 6 to 10, यू विल बी लिसनिंग टू मी फ्रॉम 7 टू 11 नाउ ऑन अ वीकडे मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे. इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड नाउ. 7 टू 11 इंस्टेड ऑफ 6 टू 10. यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल्स. आई एम सिड सेट, SIDSETH. टिल टुमारो, शार्प एट 7 नाउ. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर मंडे. बाय बाय.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE, कॉल 800-247. Big 106.2. That's My Song by E. &

0: Big Unlimited. Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
3: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
4: Mere samne analysis aaya hai. That the kind of music you like, you're basically emotional, you are nostalgic, you probably have a song for every life situation, you are a romantic at heart even if you pretend that you are not, and you love shared experiences like weddings, road trips, karaoke and Antakshri. Kya Baba Ji ne sahi guess kiya hai aapke bare mein?
5: Absolutely. Because, you know, when you were saying everything, I was actually relating to, yeah, this is what I have done. This is what I've been doing so far.
4: Oh,
5: yeah,
4: my God.
5: Music Baba is like very right.
4: मेरे म्यूजिक बाबा को बोलना पड़ेगा कि इसका हम पैसा चार्ज कर सकते हैं साइड बिजनेस।
5: यस यस फॉर श्योर।
4: चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज अमेजिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

यूज करने पर पाइए गोल्ड चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी क्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल्ड चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक इट्स 107 ऑन द बिग क्लॉक। गुड आफ्टरनून।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 51% पे, ब्राइट एंड सनी डे, लोज आज जाएंगे सिर्फ 32 तक। इट्स गोइंग टू बी हॉट एंड ह्यूमिड।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 Song Hour, brought to you by insurancemarket.com.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
1: One 18 on the big clock. Hanji, a very very good afternoon. Zohra ke saath ho aap. I'll be with you all the way until 5 p.m. today. Lekin filhal is ghante hum khelne wale ek brand new game jo main aapke saath khelna chahti hoon. Now undercover to hum sabne khela hai. Figuring out ye undercover kaun hai, is mukhote ke piche kaun hai. Clues aapko milne wale hain. You just need to be able to guess main kiski baat kar rahi hoon. This is the big Bollywood undercover.
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बैठे बैठे क्या कर रहे, करना है कुछ काम. हम खेलेंगे मेरा ये गेम जिसका ये बना है मैंने क्रिएटिव सा नाम. ओके, हम खेलने वाले हैं द बिग बॉलीवुड अंडरकवर. यहाँ पे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मैं यू नो इन अ फ्यू क्लूज इन अ फ्यू क्यूज डिस्क्राइब करने वाली हूँ. थोड़े से ऊट पटांग से क्यूज है, बिकॉज इफ आई मेक इट दैट ईजी, मतलब व्हाट्स द फन इन इट, राइट? बोर हो रहे हो तो थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाओ इस चीज़ में. नाउ दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी इज नोन टू बी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, राइट? सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यही करती है. शी ऑलवेज हैज़ एन ओपिनियन अबाउट समथिंग. चाहे इन्हें कोई कुछ बोले या ना बोले, इनको बड़ा मजा आता है आगे से कुछ शुरू करने में, इंस्टिगेट करने में, शुरुआत करने में. शी इज़ द मोस्ट अपफ्रंट, मोस्ट ब्लंट सेलिब्रिटी that I've known. She's a very famous actor and also a producer. She made her Bollywood debut at the age of 19. Movie ka naam nahi bataungi, it'll become too easy. Inko ye thoda sa alag hai. This is a general knowledge information for you. Inka ghar ka nickname Arshad hai, theek hai? Inko inki family ne ye nickname diya tha. It's basically the meaning is devotion. तो इनको अर्शद का निकनेम दिया था घर पर, बट आई डोंट थिंक एनी बडी इन बॉलीवुड नोज दैट. बट इनका बॉलीवुड वाला जो निकनेम है, शी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड फॉर राइट रीजन. शी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड. वेरी वेरी फेमस एक्टर, प्रोड्यूसर, क्वीन ऑफ बॉलीवुड. डेब्यू किया एट द एज ऑफ 19. मोस्ट अपफ्रंट, मोस्ट ब्लंट सेलिब्रिटी दैट आई हैव एवर नोन. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इन्हीं के होते हैं. एक और क्लू आपको देना चाहती हूँ. रिसेंटली ये रियलिटी टीवी का एक नया शो शुरू हुआ है कॉल्ड लॉकअप, एंड इसके लेटेस्ट एपिसोड में इनका अपियरेंस हुआ, वेयर शी जस्ट गेव अ रियलिटी चेक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स इन हर ओन कूल यूनिक वे. एक छोटा सा ऑडियो बाइट है, ये मैं आपको सुना सकती हूँ, बट आई एम चूजिंग टू नॉट मेक यू मेक इट दैट ईजी फॉर यू राइट नाउ. सो इफ यू थिंक यू नो विच सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे कॉल करो 800-1062 पे. यू कैन इवन मैसेज अस 4305 पे 800-1062. ऑल्दो गेट कॉलिंग एंड लेट मी नो इफ यू थिंक विच सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यू थिंक यू नो. एक और क्लू देती हूँ यार, ये गाना जो है इनकी मूवी का है.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
3: Mugembo, khush hua.
4: Suna hai aap dono ne gaana? चलो नहीं नहीं अभी तो सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा है।
5: अच्छा,
4: नहीं किस चीज के लिए बिग दिलीप बोला आपने, मैं जानना चाह रही
5: हूँ। मैं समझा कि गाने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या,
4: पर मैंने तो गाना सुनाई दिया, इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे आप?
5: अच्छा, राइट राइट, पूरा सुनाई दिया, करेक्ट।
4: चलो अब आपका पहला सवाल है, नेम द एक्ट्रेस जो इस गाने में थी।
5: बिग दिलीप, कैटरीना कैफ।
4: श्योर हो सर आप?
5: Yes, बिल्कुल।
4: सोच सोच के बोला, बिल्कुल सही जवाब, कैटरीना कैफ इज द राइट आंसर।
5: थैंक यू।
4: गाना जो आपने अभी भी सुना तेरी ओर, ये किस मूवी से था?
5: बिग दिलीप।
4: हाँ जी,
5: सिंह इज सिंह।
4: बिल्कुल सही जवाब।
6: कांग्रेचुलेशन दिलीप।
4: हाय यार जहीर, आप सच्ची बड़े दिल वाले हो।
6: कोई बात नहीं है, बेटर नेक्स्ट टाइम।
4: हाउ स्वीट, वी नीड मोर पीपल लाइक जहीर। तालियां जहीर के लिए भी यार, सब किसी ने नहीं किया आज से पहले।
5: आई लाइक दिस स्पिरिट यार, आई लाइक दिस।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
7: ए जल्दी हटा, तेरा खटारा चल हटा। हां जल्दी हटा, हां हां।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae।
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल देखो यार, मेरे तो टाइमिंग थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो आते वक्त मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन ट्रैफिक अभी बढ़ता हुआ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। DAD9 एयरपोर्ट स्ट्रीट, स्पेशली अगर आप E11 शेख राशिद जंक्शन के पास है, दिस इज अराउंड पोर्ट साइड, आपको मिलेगा थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक, 8 से 10 मिनट का वहां पर डिले है। E311 लेकर अगर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ, सिटी सेंटर मर्डर से ये ट्रैफिक शुरू हो रहा है ऑल द वे अंटिल मुहैसना द फोर्थ, वहां पे कार एक्सीडेंट हुआ है, इनफैक्ट दैट इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट अ 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। उसके अलावा द यूजुअल हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा E11 पे, साथ ही साथ अगर आप D79 पर है खालिद बिन अल वलीद स्ट्रीट उम हुरैर फर्स्ट के पास, वहां पे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फॉर अबाउट 12 मिनट्स। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month। Big 106.2।
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hanji, hello, hello, good afternoon. Zohra ke saath on the Big Mix all the way until 5 p.m. Filhal hum khel rahe hain the Big Bollywood Undercover. Maine aapko kuch clues diye the. Un clues ke basis pe aapko mujhe batana tha ye kaun si celebrity hai jinki main baat kar rahi hoon. Theek hai, very famous actor and producer. She's known as the Queen of Bollywood. Debut kiya at the age of 19 and she's the most upfront, most blunt celebrity. सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी है ये. कौन है ये मोहतरमा? मेरे साथ फोन लाइन पे एक और मोहतरमा. हाय बिंदी, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू जोरा?
1: मैं बिल्कुल ठीक है यार. बिंदी, इतना क्यूट नाम है आपका. बिंदी, बिंदु सुना है मैंने. बिंदु नाम से वैसे मुझे डर लगता है. मेरी एक स्कूल टीचर हुआ करती थी बिंदु नाम की, एंड शी वॉज वेरी वेरी स्कैरी. तो मुझे इन जनरल अब उस नाम से डर लगता है, बट बिंदी बड़ा क्यूट नाम है. और आप आवाज, मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी.

0: हो बिंदी.
1: थैंक यू.
0: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं खिकी करके. क्या करते हो आप बिंदी?
1: बस मैं होम मेकर हूँ.
0: अरे आप होम मेकर नहीं हो, आपको पता नहीं हमारे रूलर ने क्या कहा, आप क्या हो. नहीं नहीं नहीं, चलो यार, बहुत बहुत अच्छी बात है. इट्स रियली रियली नाइस टू टॉक टू यू, यू आर वेरी वेरी प्लेजेंट. बिंदी मुझे बताओ कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनके मैंने क्लूज दिए हैं, इनका नाम क्या है?
1: कंगना रनौत.
0: ये आप श्योर हो?
1: यस यस आई एम श्योर.
0: आप इनके फैन हो ऐसे कंगना रनौत के?
1: लिटिल लिटिल.
0: क्यों लिटिल लिटिल?
1: इतनी नई फैन हूँ, इसलिए.
0: इतनी नई फैन. उनके इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, बताओ मुझे.
1: वो है कि जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी, और बोल्ड सामने बोल देती है.
0: अच्छी बात है ना, वो तो
1: अच्छा है. हाँ, वो अच्छी लगती है बात.
0: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना.
1: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है पर इतनी मूवी नहीं आई.
0: इतना सोच सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है ज़ोरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप. नहीं, आई रियली रियली लाइक हर. शी इज़ वेरी अपफ्रंट, वेरी वेरी लाइक यू नो ऑनेस्ट. बट आई फील लाइक समटाइम्स जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे आई थिंक थोड़ी उंगली नहीं करनी चाहिए, है ना? क्या लगता है आपको?
1: ओके, यस यस.
0: ऐसे ऐसे कलेशी लोग वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत घूम रहे हैं जो उंगली करते रहते हैं.
1: जहाँ नहीं जरूरत वहाँ भी बोल देती है.
0: बिल्कुल सही जवाब बिंदी. मुझे नहीं लगता आप वैसी हैं कि जगह जगह पे जाके उंगली करेंगी, लोगों को तंग करेंगी. अरे करते हो?
1: नहीं
0: करती हूँ. मुझे लगा पहले ही बोल दिया मैं तो करती हूँ.
1: नहीं नहीं नहीं करती हूँ.
0: आप लगते हो वैसे इतने प्यारे से, यू नो, अपने काम से काम रखने वाले, है ना? आप तो ऐसे लगते हो कि लोग आपके साथ उंगली करते होंगे. कभी किसी ने अगर आपको आके तंग किया ना, मुझे बताना, ठीक है? मुझे सीधे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी उनकी क्लास लेने के लिए. चलो बिंदी, लवली टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट डे. एक मिनट में बिंदी, बिंदी रुको ना एक सेकंड. जाने से पहले मुझे कना का वो एक डायलॉग बोलते जाओ ना, अरे हमारा तो लाइफ ही खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया. बोलते जाओ ना,
1: हमारा तो लाइफ ही खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया.
0: आपके जैसे लोग होने चाहिए जो लाइफ खराब होने के बाद भी घर के हंसते थे. चलो यार बिंदी, लवली टॉकिंग टू यू, बाय. बड़ी प्यारी सी बिंदी ऑन द फोन लाइन विद अस. बिल्कुल सही जवाब. ऑन द बिग बॉलीवुड अंडरकवर वी स्पोक अबाउट कंगना रनौत, वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल बट आल्सो द क्वीन ऑफ बॉलीवुड. इफ यू टू वुड लाइक टू प्ले, ऑल यू गॉट टू डू इज कीप लिसनिंग. यार बहुत ही फन गेम्स हम थ्रू द शो खेलते रहेंगे आज.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: As more than 500 people have now died from Ebola. The health ministry says there are now more than 1,500 confirmed cases. The UN Children's Agency says at least 18 children have been killed in drone strikes and other attacks in Sudan's North Kordofan state since May. UNICEF's representative to Sudan says schools, hospitals and markets were hit daily. Firefighters are tackling wildfires in several European countries which have been sweltering in high temperatures. Spectators have been banned from the Tour de France because of fire-related risks. And at the Men's Football World Cup, England have become the latest team to reach the quarterfinals after beating the co-hosts Mexico in the last 16 in Mexico City. They'll now face Norway, who eliminated the five-time champions Brazil. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: बिल्कुल सही यार, 2:02 हो चुके हैं. ज़ोहरा के साथ हो आप इन द सेकंड आवर ऑफ द शो द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 5 PM राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है यार, शादियां भी हो रही हैं. शादियों के अलावा मतलब इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स दैट एवरीथिंग इज जस्ट एक्साइटिंग ऑल ओवर अगेन. एंड आई थिंक दिस इज वॉट वी वर मिसिंग इन बॉलीवुड, समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग दैट एवरी वन वुड वॉन्ट टू यू नो वेट फॉर एंड ऑल्सो वॉच विथ ऑल दैट एंथुजियाज्म. मैं बात कर रही हूँ ऑफ द मूवी किंग. इसका बज इतने टाइम से चलता आ रहा है दैट नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू लूज पेशेंस, लाइक रिलीज द मूवी ऑलरेडी. वी नीड अ शाहरुख खान बैक ऑन द बिग स्क्रीन बिकॉज आई थिंक इट्स बिन गॉन फॉर अ वाइल नाउ. बट एक पोस्ट मेरे सामने आया है दैट टॉक्स अबाउट द एंटायर स्टारकास्ट ऑफ द मूवी किंग एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बॉलीवुड मूवी ऑफ ऑल टाइम. आई विल टेल यू एग्जैक्टली वाई, बिकॉज नाम अगर आप सुनोगे इसमें कौन कौन है तो मतलब आपके भी होश उड़ जाएंगे यार. लेट्स किक स्टार्ट द ईयर विद माय मोस्ट फेवरेट मैशअप. इट्स हॉटलाइन Bling and Lal Kagra coming your way on the Big Mix.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। फिर आफ्टरनून 2:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat.
2: बिल्कुल सही यार, 2:18 ऑन द बिग क्लॉक, ज़ोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स. इट्स द सेकंड आवर ऑफ द शो एंड इन द सेकंड आवर ऑफ द शो ऑन द बिग बॉलीवुड टी. देखो बॉलीवुड में बहुत सारी मतलब अंदर अंदर की बातें चल रही होती है जो ऑब्वियसली अंदर अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रुकती, बाहर आ ही जाती है. तो अभी भी ओवर द वीकेंड मेनी थिंग्स हैपेंड. ऑफ कोर्स वी नो द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड इज आमिर खान गेटिंग रीमैरिड येट अनदर टाइम एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल. यार मुझे नेगेटिव टोन में बातें करनी है बिकॉज यार हैप्पी मोमेंट है, उसको सेलिब्रेट करो ना यार. आप कौन ही होते हो जज करने वाले. आई फील लाइक इट वॉज अ ब्यूटिफुल इंटरमिट सेरेमनी. ही मैरिड हिज लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रत से इन्होंने शादी की ऑन द 5th of July. इंटरमिट होम सेरेमनी थी एंड अपने रेजिडेंस में की मुंबई में ही कर दी एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. आई सॉ देम डांसिंग, कपड़े प्यारे पहने थे, जस्ट लुक लाइक अ ब्यूटिफुल फैमिली अफेयर एंड honestly I just have you know blessings being sent their way. That's all I want to say. But what I want to talk about right now, the biggest thing that I want to talk about, see king ke bare mein to bahut sari baatein hoti aa rahi hai and everyone's been eagerly waiting to see kab release hogi and you know when do we get to see Shah Rukh Khan on the big screen. Also daddy and daughter duo are going to be on the big screen together, so that is exciting as well. But maine pura star cast ka lineup dekh liya and it's so exciting. I mean check this out. Shah Rukh Khan, Suhana Khan, अभिषेक बच्चन इज गोइंग टू बी द लीड एंटेगनिस्ट, लीड विलन जो है. दीपिका पादुकोण, यू नो कि दीपिका एंड शाहरुख की हिट जोड़ी तो है ही. अनिल कपूर होंगे इसमें, अपेरेंटली ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग द मेंटोर ऑफ शाहरुख खान और द लीड एक्टर जो है वो. जैकी श्रॉफ है, अरशद वारसी है, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयल, अभय वर्मा, सौरभ शुक्ला, एक एक नाम. आई फील ईच ऑफ देम आर अ किंग इन देयर ओन वर्ल्ड. ऑनेस्टली दिस इज द बिगेस्ट स्टार कास्ट दैट आई हैव एवर यू नो रेड ऑफ हर्ड ऑफ एंड आई जस्ट कांट वेट. विच गॉट मी टू थिंक कि यार ऐसे आपके साथ हुआ है कि आप इतने एक्साइट हो जाते हो किसी मूवी को लेके दैट यू एंड अप यू नो लाइक चीयरिंग एंड रूटिंग एंड वूटिंग इन द सिनेमास. क्योंकि ये मैंने किया है, व्हेन आई गेट वेरी एक्साइटेड तो चीयर करना, वूहू करना, ये मैंने सिनेमा के अंदर किया है. आई नो यूजुअली ना करो तो better hai, you know, civic sense and all of that, but when everyone is cheering you can like go with the flow, right? So I think the last time I did it was when I watched Jawan in the cinemas. That was also a Shah Rukh Khan movie. Uske baad mujhe nahi lagta aisi koi movie aayi jisme cinemas mein aisa bawal mach gaya. I'm sure Dhurandhar जहाँ कहीं पर रिलीज हुई होगी वहाँ पर आई थिंक हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक एनी अदर मूवी हैज़ बिन एबल टू मैच दैट. ओनली शाहरुख खान का नाम इज इनफ टू गेट दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतना बड़ा स्टारकास्ट देख लिया और उनकी बढ़िया सी एंट्री होने लगी ऑन द बिग स्क्रीन, वुड यू बी द वन टू चीयर इन अ सिनेमा, लाइक चिल्ला के तालियाँ बजा के? और आर यू द काइंड टू फील लाइक अरे नहीं यार लोग जज कर देंगे? तो नहीं करते, चुप ही रह जाते हैं नो मैटर हाउ एक्साइटेड यू आर. लेट मी नो 800-1062 पे. इन द मीन टाइम धुरंधर की बात की है तो उसी का गाना लुट ले गया, कमिंग योर वे राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. वेरी गुड आफ्टरनून.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Mere naseeb mein tu hai ki nahi, aapki naseeb mein ye hai ki nahi, aapko pata chalega. Only and only if you participate na yaar. Very, very good afternoon. You're with me, Zohra, on The Big Mix. I am talking about the big summer surprise that we have for you this time, yaar. Big 106.2 is giving you the ultimate stake on big summer surprises. Presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixo Salman. रासल हेमा में जो ये प्रॉपर्टी है इतनी स्टनिंग है, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद इट. सो गेट रेडी टू विन अ फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग रिक्सो सलमायरा इन रासल हेमा. परफेक्ट है आपके लिए रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, मेमोरीज भी बनाने के लिए. एंड यू कैन चूज, यू नो, व्हाटएवर टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू हैव. इफ यू आर द आउटगोइंग वन, देन मे बी जस्ट गो आउट, मीट अ फ्यू पीपल, यू नो, ओवर गुड फूड. या फिर आपको अपनी, यू नो, सॉलिडैरिटी पसंद आती है, अकेले रहना पसंद आता है, तो जस्ट चिल बाय द, you know, pool, या फिर just go

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

डॉल में सोने दी। यार ये गाना जब रिलीज हुआ था क्या मतलब क्या क्रेज बन गया था इस गाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग वेदर इट्स द लिरिक्स दैट आर कैची, द ट्यून, और वेदर इट्स सनी लियोनी हरसेल्फ, आई थिंक एवरीथिंग ऑल टुगेदर मेड द सॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर दैट इट इज ऑलरेडी बाय दिस पॉइंट। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज हाउ वी एज वुमेन आर सो एक्साइटेड अबाउट वेयरिंग क्लोथ्स, है ना। हम तो बहुत खुश हो जाते हैं कपड़े, आई थिंक हमारी हैप्पीनेस का सोर्स है, दैट इज वेयर वी स्टार्ट गेटिंग हैप्पी। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि सेम कपड़े दोबारा नहीं पहनने, मतलब लोग जज करेंगे, स्पेशली इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, देन यू हैव दिस प्रेशर ऑल द मोर, राइट? पीपल रिमेंबर व्हाट यू वोन, सो बिकॉज ऑफ दैट यू फील लाइक नहीं दोबारा नहीं पहन सकते, नए नए कपड़े लो, नए नए कपड़े लो, पैसे वेस्ट करो। इसका सोल्यूशन क्या है? एंड अगर किसी सेलिब्रिटी ने बड़े प्लेटफॉर्म पर यह चीज कर दी, वुड यू देन हैव द कॉन्फिडेंस टू डू इट? बिकॉज अ वेरी बिग हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैज नाउ डन समथिंग दैट हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द डिबेट इन द नेक्स्ट आवर ऑन व्हाट्स द बिग डील। ये क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? All that to follow in the next hour. Keep me company. My name is Zora. With you until 5.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 3:07 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुखविंदर सिंह ऑन द लीड ऑफ दिस वन। हां जी 100% फैशन का ही जलवा है, फैशन का ही पूरा गेम है। एंड आई थिंक इट इज सच अ सब्जेक्टिव थिंग, राइट? फैशन आप कुछ भी पहन लो, किसी भी तरीके से पहन लो, इफ यू नो एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू पुल इट ऑफ, आई थिंक बहन तू कुछ भी पहन।
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: और हमारी बहन जो है एन हैथवे, वेरी वेरी पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस, इन्होंने रिसेंटली एक अपीयरेंस किया एंड दैट अपीयरेंस बिकेम द टॉकिंग पॉइंट। सारे मीडिया आउटलेट, सब लोग मतलब उन्हीं के पीछे पड़ गए। शी इज एक्सपेक्टिंग हर थर्ड चाइल्ड एंड शी इज ग्लोइंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो उन्होंने एक रेड आउटफिट पहना, इट वॉज अ नाइस पेपलम टॉप विद यू नो हैरम पैंट्स। एंड सो बेसिकली इट इज फ्रॉम द लेबल एशलिन एंड इट वॉज बेसिकली अ बोट नेक टॉप। बोट नेक टॉप अगर आपको नहीं पता क्या है, इट इज अ वेरी हाई नेक टॉप, मतलब आपका नेक पूरा कवर्ड होता है शोल्डर्स तक जाता हुआ एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड। इट वॉज सपोज टू बी वोन दैट वे। नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग एंड यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दो योर बॉडीली चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट, सर्टन थिंग्स आर नॉट कंफर्टेबल टू यू एनी मोर। सो शी डिसाइडेड टू वेयर दैट एंड मेक अ पब्लिक अपियरेंस बट विद अ ट्विस्ट। सो शी फ्लिप द टॉप अराउंड, उल्टी तरीके से पहना, जो बैक का साइड था वो आगे नेक की तरफ कर दिया, जो नेक का साइड था वो पीछे बैक की तरफ कर दिया एंड शी वोर इट उल्टा। एंड ऑब्वियसली बिकॉज वॉट शी वॉज वेयरिंग इज सो फेमस, इज सो पॉपुलर, पीपल स्पॉटेड इट इमीडिएटली कि ये मतलब आउटफिट ऐसा तो नहीं पहना जाता, ये तो पीछे वाला पार्ट है। डिड यू एक्चुअली मेक अ मिस्टेक? क्या इन्होंने गलती से इसको उल्टा पहन लिया? इज द मॉमी ब्रेन ऑलरेडी हिटिंग यू? सो मेनी हेडलाइंस, सो मेनी थिंग्स दैट पीपल यू नो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एंड शी फाउंड इट हिलेरियस बिकॉज यार कंफर्ट की बात होती है, मुझे नहीं पहनना था बोट लाइन नेक लाइन जो भी था, आई वॉन्टेड टू वेयर इट दिस वे सो आई डिड। ऑल्सो उन्होंने अपना एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा नेकलेस पहना था विच शी वॉन्टेड टू शो ऑफ विथ, सो शी थॉट लाइक बोट नेक डज नॉट वर्क विथ इट। मैंने उसको फ्लिप कर दिया, नाउ आई हैव अ नाइस ब्यूटिफुल नेकलाइन, आई कैन शो ऑफ माई चोकर नेकलेस, सो वाई नॉट, एंड ऑल्सो इट यू नो शोज माई बेबी बंप इन अ मोर ब्यूटिफुल वे। सो शी डिड दैट बेसिकली एंड आई फील लाइक एवरीवन शुड बी डूइंग दैट। आपका कंफर्ट मैटर करता है, आपका स्टाइल आपको मैटर करता है। इफ यू थिंक वेयरिंग समथिंग डिफरेंटली इज गोइंग टू हेल्प यू लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड फील मोर कंफर्टेबल, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन आई हैव डन इट, इनफैक्ट टुडे आई विल पुट अप अ फ्यू स्टोरीज, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आई वोन अ स्कार्फ एज अ टॉप टुडे, ऑल्दो स्कार्फ्स वर ओरिजिनली मेड फॉर योर हेड, राइट? हेड के लिए, नेक के लिए स्कार्फ्स बने थे, बट आई फील लाइक यू कैन वेयर इट हाउएवर यू वांट टू। आई वोर इट एज अ टॉप, टुमारो आई माइट वेयर इट एज अ बेल्ट। सो आई फील लाइक फैशन इज वेरी सब्जेक्टिव एंड if you're comfortable and confident you can pull off anything the way it is. So my question to you is, are you the kind of person to stick to fashion ki yaar ye is cheez ke liye bana tha, uska apman nahi karo, usko usi tarah pehno, or are you the kind to say like go out, creativity isi cheez ke liye bani thi, explore, wear it however you can wear it, behen tu kuch bhi pehen. Let me know what your thoughts are. 800-106-2 pe

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixas Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
3: Mugembo, khush hua.
4: Suna hai aap dono ne gana?
5: जी जी सुना।
4: चलो नहीं नहीं अभी तो सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा है।
5: अच्छा,
4: नहीं किस चीज के लिए बिग दिलीप बोला आपने, मैं जानना चाह रही
5: हूँ। मैं समझा कि गाने को आइडेंटिफाई करना है कि क्या,
4: पर मैंने तो गाना सुना ही दिया, इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे आप?
5: राइट राइट, पूरा सुनाई दिया, करेक्ट।
4: चलो अब आपका पहला सवाल है, नेम द एक्ट्रेस जो इस गाने में थी।
5: बिग दिलीप, कैटरीना कैफ।
4: श्योर हो सर आप?
5: Yes, बिल्कुल।
4: सोच सोच के बोला, बिल्कुल सही जवाब, कैटरीना कैफ इज द राइट आंसर।
5: थैंक यू।
4: गाना जो आपने अभी भी सुना तेरी ओर, ये किस मूवी से था?
5: बिग दिलीप।
4: हाँ जी,
5: सिंह इज सिंह।
4: बिल्कुल सही जवाब।
6: कांग्रेचुलेशन दिलीप।
4: हाय यार जहीर, आप सच्ची बड़े दिल वाले हो।
6: कोई बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
4: हाउ स्वीट, वी नीड मोर पीपल लाइक जहीर। तालियां जहीर के लिए भी यार, सब किसी ने नहीं किया आज से पहले।
5: आई लाइक दिस स्पिरिट यार, आई लाइक दिस।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: 37 डिग्री सेल्सियस है बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 54% पे पहुंच चुकी है। हाइज होपफुली इससे ज्यादा आज नहीं जाएंगे। इट इज स्टिल गोइंग टू बी हॉट एंड ह्यूमिड, वेरी ब्राइट एंड सनी ऑल्सो एट द मोमेंट। स्टिल लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32 लेटर दिस इवनिंग। अ वेरी गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोहरा।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 10 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Jio.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
4: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The beat of Bollywood.

धुरंधर द रिवेंज से दीदी आपने सुना राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल ये दीदी भी आपके साथ होने वाली है ऑल द वे अंटिल 5 पीएम. वी आर हेडिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आई मेक द लास्ट आवर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू विद माय वेरी वेरी फन गेम. नाउ बचपन में हम सब ने नेम प्लेस एनिमल थिंग भर भर के जी भर के खेला है. आई हैव मेड अ बॉलीवुड वर्जन ऑफ इट वेयर आई आस्क यू द सेम थिंग्स नेम प्लेस मूवी एंड थिंग इंस्टेड एंड इट इज अ बॉलीवुड गेम. अगर आपका मन कर रहा है खेलने का, if you feel like you've always aced this in your childhood, shayad bade hote hote aapka touch chhoot gaya ho, to us touch mein aapko wapas le aate hain. If you want to play, all you've got to do is call me 800-1062 pe. In the next hour, we are going to be playing name, place, movie, thing. More on that to follow in just a bit. You're with me, Zora, until 5. Good afternoon.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बचाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू।
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: चार बज चुके हैं, हां जी, और पार्टी भी अभी बाकी है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ज़ोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 5 PM। दिस इज द लास्ट आवर ऑफ द शो एंड आई एम गोना मेक श्योर कि इट बिकम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यार बचपन में जो हमने गेम खेला था नेम प्लेस एनिमल थे, उसका मैं एक बॉलीवुड बहुत ही फन वर्जन खेलती हूँ दिस आवर। इट्स कॉल्ड नेम प्लेस मूवी थिंग। वन लेटर एंड ऑल यू गॉट टू डू इज नेम द फोर कैटेगरीज। इट इज सुपर सुपर फन एंड सुपर सुपर इजी। सो इफ यू लाइक टू प्ले विद मी, गेट कॉलिंग 800-106-2 पे। दैट्स 800-106-2, दैट्स अ टोल फ्री नंबर। गेट कॉलिंग, प्ले नेम प्लेस मूवी थिंग विद मी। इट इज सुपर फन।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:08 हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Aura ke saath ho aap on the big mix. I keep you company until 5. Filhal, in the last hour, we are playing my very favorite and very, very fun game.
1: Are you ready for this?
2: Name, place, movie, thing.
1: Yeah.
0: नेम प्लेस मूवी थिंग, बहुत ही सिंपल सा ये गेम है जो मैं आपके साथ अभी खेलने वाली हूँ. विद मी ऑन द फोन लाइन राइट नाउ इज आदित्य. हाय आदित्य, व्हाट्स अप?
3: I'm good. How are you?
0: बढ़िया यार, अभी एकदम बढ़िया आवाज आ रही है, तभी मतलब सुन ही नहीं पा रही थी. कहाँ जा रहे थे, किस जंगल में खो गए थे आप?
3: I was in Ajman actually. I was
0: See,
3: driving
0: no
3: to
0: wonder,
3: work.
0: मतलब मैं ऐसे मिल ही नहीं रहा था आपसे बात करने
3: की दुनिया
0: का.
3: ही ऐसा ही है.
0: अरे सेल्स वाले इतने बिजी होते हैं, इतना पैसा ला रहे होते हैं. कितना पैसा कमाओगे आप जिंदगी में, थक जाओगे. अच्छा आदित्य, दिस इज द एज आप ब्रैक करने की कोशिश कर रहे हो. मैं आपसे बहुत जवान हूँ, बुढ़ी हूँ. ओके आदित्य, चलो वेरी सिंपल फन गेम वी आर गोइंग टू प्ले. नेम प्लेस एनिमल थिंग, बचपन में खेला आपने?
3: Yes, of course. Okay, so अभी भी खेलता हूं.
0: अरे वाह शाबाश, ये होती है बात, है ना. तो अभी हम खेलेंगे दिस गेम विद अ ट्विस्ट, नेम प्लेस मूवी थिंग. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं आपको एक लेटर देने वाली हूँ. उस लेटर से यू हैव टू गिव मी अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम, यू हैव टू गिव मी अ बॉलीवुड मूवी, यू हैव टू गिव मी एनी प्लेस एंड यू हैव टू गिव मी एनी थिंग. ठीक है, वेरी सिंपल.
3: ओके,
0: फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच कैटेगरी आपको 5 सेकंड का मैं टाइम भी दे दूंगी. ठीक है ना?
3: ओके,
0: रेडी फॉर इट?
3: यस.
0: चलो, आप प्रो हो वैसे बॉलीवुड में, तो मैं प्रो लेटर देती हूँ आपको.
3: आई थिंक सो.
0: चलो मीडियम वाले लेवल पे खेलते हैं. द लेटर आई एम गिविंग यू फॉर द डे इज द लेटर टी. टी फॉर ठुमका, है ना. टी से खेलेंगे हम. टी से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो. अरे वो जो स्प्लिट करता है जल्दी.
3: मूवी
0: पहले सेलिब्रिटी तो बता दो यार.
3: सेलिब्रिटी का है.
0: एक काम करते हैं, हम इजी लेवल से शुरू करते हैं. ठीक है, आप ऐसे नर्वस हो रहे हो, इजी लेटर से शुरू करेंगे. मैं लेटर दे रही हूँ आपको, लेटर एस. एस, ठीक है. एस एस, सांप सांप, है ना. एस से आपको बताना है बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम बताओ. चलो
3: ओके, शाहरुख खान.
0: वेरी गुड. अब बताओ बॉलीवुड मूवी.
3: शंघाई.
0: हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. अब बताओ मुझे एनी प्लेस.
3: सिंगापुर.
0: वेरी गुड. अब बताओ थिंग. जिससे खाना खाते हैं. वेरी गुड. लास्ट सेकंड पे बता दिया, लास्ट सेकंड पे बता दिया. शाबाश मेरे चीते, शाबाश.
3: थैंक यू.
0: आई थिंक दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर. मुझे सिंपल लेवल से स्टार्ट करना था. आई पुट यू ऑन द स्पॉट. कोई बात नहीं, अभी डोंट वरी एट ऑल यार. चलो आदित्य, यू प्लेड रियली रियली वेल. मे बी बाय टुमारो और बाय नेक्स्ट वीक यू विल बिकम अ प्रो. देन मैं आपको इससे ऊटपटांग से लेटर्स दूंगी, है ना.
3: Yes,
0: तब तक थोड़ा और पैसा बना के आ जाना. चलो यार, नाइस टॉकिंग टू यू आदित्य, हैव अ ग्रेट डे,
3: बाय.
0: दैट इज द गेम, नेम प्लेस मूवी थिंग. बहुत ही सिंपल, इफ यू थिंक यूर अ बॉलीवुड प्रो एंड यू कैन आंसर फटाफट, मतलब 5 सेकंड की तो जरूरत भी नहीं, एक एक सेकंड में जवाब आपका निकलता है, देन ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कॉल मी यार 800-1062 पे. इन द लास्ट आवर आई प्ले दिस गेम विद यू एवरी सिंगल डे, सो मेक श्योर यू कॉल मी एंड प्ले विद मी 800-1062 पे. लेट्स कंटिन्यू द ब्यूटिफुल म्यूजिक फॉर यू.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurancemarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

करेंगे. In fact, I was just thinking over the weekend, दो चीजें हैं जिसपे देसीज बॉन्ड करते हैं, खाना और एक गाना. तो आज शाम कुछ गाना आपसे गवाया जाएगा. If you're into karaoke, you're in for a treat. I'll give you all the details. फिलहाल kick starting the show with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06 एंड टेकिंग यू टू अ मूवी दैट आई एब्सोल्युटली लव, सलमान खान। ऑल द भाईजान फैंस, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट मंडे शाम की वाइब राइट ऑन बिग 106.2, कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9 मंथ्स।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate CK. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Ready, throw!
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
4: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. A review is a story of trust. Insuremarket.ie.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
8: फिलहाल इट्स 36 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 32। लगता है मुझे ऑफिशियली उस उम्र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो मेरी हो गई है। मुझे बिना चश्मों के दिखता नहीं है एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चश्मा ना पहनूं। अभी 5 बज रहे थे, मैंने 6 बजे बोल दिया। फिलहाल 5:12। व्हेन आई कम बैक, इफ यू आर अ कैरियोकी फैन, यू आर इन फॉर अ ट्रीट, स्टे राइट हियर।
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

अगर आपको याद आ गया है ये गाना कौन सा है, एंड इफ यू कैन सिंग ऑन द कैरियोकी, देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पे। वैसे भी वीकेंड पे सिर्फ दो ही चीजें चल रही थी, बहुत सारा खाना एंड आमिर खान, तो आमिर खान का ही गाना है। सो अगर आपने गेस कर लिया एंड इफ यू सिंग देन गिव मी अ कॉल, आई एम लुकिंग फॉर यू आश्राम। फिलहाल दूसरों की आवाज में गाने सुनते हैं, आपकी आवाज आने में थोड़ी देर है। वी हैव गॉट दिस वन।

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi, and we're talking about karaoke. वैसे अगर आप कार के बारे में सोच रहे हैं, you're planning to rent one and you're thinking कि यार गाड़ी रेंट करना तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो भाई काम की बात बताती हूँ. Selfdrive.ae has the most affordable car rental in the UAE right now, starting from just 899 dirhams a month. बिल्कुल सही सुना आपने, 899 dirhams a month. At this price, paying more just doesn't make sense. कोई ownership नहीं है, कोई long term commitment नहीं है, कोई stress ही नहीं है. Just pick your car and drive. That's it. Look for selfdrive.ae. आप app भी download कर सकते हैं. Selfdrive is your car, your price, your way. And when you get your car from selfdrive.ae, we'll definitely have some karaoke sessions. फिलहाल बहुत सारे karaoke king and queens जो है आ चुके हैं, but I have actually selected two. तो इनके बीच में होगा मुकाबला in just a bit. फिलहाल we've got Munch Music right here on Big 106.2. मैंने कहा ना, मंडे को आज मेरी फ्राइडे वाली वाइब है.

0: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी एंड एक थ्रिलिंग एक्साइटिंग ऑल एक्सपेंसेस पेड वेकेशन, वो भी पूरी फैमिली के साथ सह परिवार आप एंजॉय कर सकते हैं. वेरी वेरी सिंपल बिग समर सरप्राइजेस इट इज. अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है, डू इट राइट अवे. BSS अपना पूरा नाम लिख के व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर.
1: Participate in the spell battle contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: When you will register, our randomizer is going to pick two names. Unke beech mein ek spell battle hoga. Jo bhi jeetega uska naam draw mein to jayega for the staycation. Plus, you'll get a chance to go and watch any movie that you feel like. Open movie tickets aap jeetenge, saath mein F&B vouchers. So get set messaging. Filhal coming up, break your spar.
2: Chori chori yu chach ho.
0: Aankhe char kya hota hai. If you haven't seen the movie, it's on Netflix. Please watch it. You'll love it and you'll thank me later. Coming up.
1: Big 106.2.

0: होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना।
1: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है क्यों ही? तेरे बाप का माल है।
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Mansi. And गाड़ी में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा गाते हैं, थोड़ा गुनगुनाते हैं. Karaoke is one thing that I absolutely love. And अब हर शाम हम गाड़ी में करेंगे karaoke.
0: Karaoke.
1: So I played you a track which was of course from Aamir Khan's movie. मुझे लगता है कि मेरे हिस्से की भी शादियां आमिर खान ने ही कर ली हैं, है ना अली, है ना वैंडी. अली एंड वैंडी यहाँ पे आ चुके हैं. Over the weekend आमिर खान was trending on socials, तो मैंने बोला कि चलो आज आमिर खान का ही karaoke track सुनाते हैं. So वैंडी, do you sing? Do you like karaoke?
2: Yes, I love karaoke and I think okay.
1: अच्छा, इन्होंने पहले ही disclaimer दे दिया है. देखो यहाँ पे फायदा ऐसा है कि जो लोग गाड़ी में बैठे हैं वो भाग नहीं पाएंगे, वो गाड़ी में बैठ के ही सुनेंगे. अली, आप गाते हैं?
3: इतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुझे फैमिलियरिटी है गाने.
1: सुर और ताल का आपको पता है. तो देखते हैं आज शाम वैंडी एंड अली में से कौन बनता है हमारा karaoke किंग और क्वीन. तो अब ऑन द काउंट ऑफ थ्री, पहले अली आप शुरू करेंगे, आप गाएंगे कि लेडीज फर्स्ट करें?
3: लेडी फर्स्ट करें.
2: नहीं, अली को ही गाने दो.
1: अली गा दो पहले आप में गाड़ी छूट जाती है. चलो जी, मैं आपको ट्रैक सुनाती हूँ, ट्रैक पे ही गाना है अपने.

0: हम सफर हाँ ए मेरे
1: हम सफर से दरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की।
0: मैंने अभी ज्यादा उम्मीदें आप दोनों से लगाई नहीं है तो ठीक है। वैंडी आप आगे से कंटिन्यू करेंगी?
2: ओके फाइन करती हूँ। अब है जुदाई का मौसम तो पल का मेहमान
0: वाह
2: कैसे थमेगा ना ना कैसे थमेगा
0: तूफान
2: कैसे
0: रिपीट हो रहा था यहाँ पे
2: तो
0: ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान भी भाग जाएंगे। नहीं नहीं पता चले इस चक्कर में मेरी क्लास लग जाए।
2: रोके ना रुकेगी
0: मंजिल प्यार की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लगता है द मेल वर्जन वैंडी ने ज्यादा अच्छा गाया। तो अली और वैंडी अब आप दोनों एक दूसरे को रेट करेंगे कि मैं पब्लिक से पूछ लूं कि कौन बनेगा आशाम कैरियोके किंग या क्वीन। ये देखो यहाँ बैठे हमारे इंडियन आइडल के जज। क्या बात है क्या बात है। आप दोनों जो है अब शेखजाद के ट्रैफिक से अपने घर जा सकते हैं। बट नॉट बैड वैंडी लाइक आई हैव टू से आप थोड़े से सुर इधर उधर हो गए थे बट आपने बड़े जोर से बड़े दिल से गाया। अली जो है वो थोड़ा सा अभी शर्मा रहे थे आज है ना।
2: शुरू
0: दोनों में से घर पे कौन कैरियोके करता है? मुझे लगता है वैंडी करती है। हाँ वैंडी करती है। अड़ोसी पड़ोसी कंप्लेन नहीं करते ना? पर
2: घर पे नहीं करती ना मैं बाहर करती हूँ इसलिए पता नहीं किसी को।
0: दूसरों के घर पे करती हूँ। बट नॉट बैड गाइस यू ट्राइड रियली रियली वेल एंड आई एम वेरी कंफ्यूज आई एम गोना लीव इट टू द पब्लिक। अब आप मुझे बता दो फोन करके या मैसेज करके कि वैंडी और अली में से आज शाम कौन बनेगा हमारा कैरियोकी किंग और क्वीन। और अगर आप भी कैरियोके करते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं 0543091062 पे। थैंक यू गाइस यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
2: थैंक यू मंसी।
0: बाय बाय। 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, ये है Big Thrill with Mansi. We're playing the 5-second rule game. हम हर शाम खेलते हैं. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. मैंने कहा ना, it sounds very, very easy. But wait until you play this game. We've got Imran. Hi, Imran.
2: Hi, ma'am.
1: मैम, वाओ, सच रिस्पेक्ट. बड़े दिनों बाद मिली है. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लड़के जो मैम बोलते हैं मुझे. बहुत सालों बाद किसी ने मुझे मैम बोला. मैं ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुकी हूँ. करते क्या है आप इमरान, लड़कियों को इम्प्रेस करने के अलावा? इंजीनियर जितने भी होते हैं ना, वो फ्लर्टिंग में कमाल होते हैं. वो लड़कियों को चार्म कर ही लेते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज्यादा लड़कियां आती नहीं है, तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं. सच है क्या?
2: नहीं, ऐसा नहीं.
1: तो ये कहाँ से?
2: अभी मैं न्यू दिल्ली से.
1: दिल्ली वाले तो भाई फिर माहिर है ना फ्लर्ट करने में. वो तो खैर दिल्ली वालों के चार्म ही अलग है. पहले वो आपको अपनी बातों में घुमाते हैं और उसके बाद ऐसे गायब होते हैं, आप ढूंढ ही नहीं पाते हो उनको दुनिया के किसी भी कोने में. मैं नहीं कह रही हूँ भाई, इंटरनेट पे सभी लड़कियां कहती हैं कि दिल्ली वाले लड़के रेड फ्लैग होते हैं. आप हैं?
2: पता है, सही भी होगा, हो सकता है. मेरी और मेरी वाइफ की शादी भी फेसबुक के थ्रू हुई थी. हम मिले भी फेसबुक पर थे.
1: फेसबुक पे कैसे मिले थे?
2: फेसबुक पे मैं फॉलो कर रहा था उन्हें काफी दिनों तक. वो भी दिल्ली से ही है.
1: फॉलो करते करते बस सारी जिंदगी फॉलो कर रहे हैं. वेरी नाइस. पर एटलीस्ट आपने शादी करी. हमें तो जो मिलते हैं वो तो गायब हो जाते हैं, चाहे वो फेसबुक पे मिले या इंस्टाग्राम पे. इमरान, हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. रूल्स आप ऑलरेडी जानते हैं. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: अब आपका नाम इमरान है तो 3 इमरान हाशमी की मूवीज. क्या? हाय, मुझे तो लगा था धमाकेदार शुरुआत होगी. मूविंग ऑन. 3 ऐसी चीजें जो येलो कलर की होती हैं आप खा सकते हैं.
2: मैंगो,
1: अमरूद. ये कौन सा पीला अमरूद, बासी अमरूद खा रहे हो यार? ग्रीन होता है अमरूद, गुवावा. मूविंग ऑन. 3 ऐसी चीजें जो आप अपने होटल रूम से उठाते हैं.
2: एक तो टॉवल होता है, एक शैम्पू होता है.
1: अरे वेरी नाइस. और एक तो टाइम 5 सेकंड होता है. फटाफट खेलने वाला गेम है. अच्छा, 3 ऐसी बातें जो आपने अपनी बीवी से फेसबुक पे कही जिससे उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया.
2: मैं उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा था और मैं
1: पूछ रही थी कौन सी ऐसी तारीफ करी जिससे बाकी लोग जो फेसबुक पे ट्राई कर रहे हैं उनके काम आए. आपने एक भी नहीं बताई है मैं उन्हें फॉलो कर रहा था. शादी के बाद 3 ऐसी चीजें जो बदल गई है इमरान आपके लिए जिसे आप मिस करते हो.
2: स्पेशली टाइम अभी बहुत ज्यादा बदल गया क्योंकि बच्चा आ गया ना बीच में, बहुत परेशान करता है. प्राइवेसी नहीं मिली.
1: तो बच्चा अपनी मर्जी से तो आया ही नहीं है, वो आपने अपनी प्राइवेसी के चक्कर में आया है.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
2: ये
1: बहुत ही खराब खेला है. मतलब इतना खराब किसी ने आज से पहले खेला नहीं है जितना आज इमरान ने खेला है. मजा आ गया, मतलब बहुत ही खराब. बट मजा आया आपसे बात करके. आपको मजा आया नहीं आया?
2: बिल्कुल.
1: बुला लो ना नानी दादी को, उनकी बच्चे को संभाल लेंगी.
2: बिल्कुल, जाना पड़ेगा मुझको लेके.
1: चलो जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू.
2: थैंक यू.
1: ये 5 सेकंड रूल. मैंने कहा ना, इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट इतना आसान है नहीं. खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Very nice. किस चीज का बिजनेस?
1: कंपनी फॉर्मेशन
0: नाइस वेरी नाइस. आप जरा नेटवर्क में आ जाओ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर.
1: नेटवर्क में ही है, ड्राइव कर रहे हैं वजह से.
0: हाँ, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है. कहाँ ड्राइव कर रहे हैं?
1: टुवर्ड्स शारजा.
0: सो एवरी डे आप दुबई से शारजा जाते हैं?
1: नहीं, मैं तो काम होता है तब यहाँ पे ऑफिस आता हूँ, अदरवाइज मेरी टीम टेक केयर करती है.
0: ये देखो, ये फायदा है खुद का बिजनेस होने का, जब काम होता है तो ही आता हूँ, वरना तो बस टीम देख लेती है. मैं बस प्रॉफिट गिनता हूँ और पैसे कमाता हूँ, टच वुड ऐसा ही रहे. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बताइए 5 सेकंड के अंदर.
1: ओके,
2: 5 सेकंड रूल. ओह यस.
0: 3 मसाले, 3 spices इन द किचन. नॉट बैड. 3 things दैट यू पुट इन योर चाय. अरे
1: डिफिकल्ट टू आंसर.
0: व्हाई यू डोंट मेक टी?
1: द टी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मी. देन
0: इसे कहते हैं टशन. टी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर मी. 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स व्हिच आर नॉट स्ट्रॉबेरी और वनीला.
1: चॉकलेट
0: और मैंगो. अरे शेर साहब, फटाफट खेलना है, बहुत हॉली हॉली खेल रहे हो. 3 मूवी टाइटल्स जिनमें दिल आता है.
1: और
0: टाइम खत्म.
2: 5 सेकंड रूल.
0: आई थिंक आपका ध्यान ड्राइविंग में है, इसलिए यहाँ नहीं हो पा रहा है. बट आपको मजा आया कि नहीं आया?
1: 5 सेकंड बहुत कम.
0: बोलो तो मैं आपको 1 घंटा दे देती हूँ, पर इतना वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो 5 सेकंड से काम चलाना पड़ेगा. बट लवली टॉकिंग टू यू. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल. और एक लौता रूल खेलने का है कि 5 सेकंड में जवाब देना है, कॉल करना है 800-1062 पर.
2: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
2: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
1: Five more winners will take up 100,000 dirhams.
2: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
1: Plus four weekly e-draw winners.
2: Turn your summer into millions.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
6: Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
7: वो कहते हैं ना, अगर गाड़ियां बोल सकती तो ये नजारा इस वक्त आपको शेख जायद पे दिखता है. 1 घंटा 5 मिनट का डिले. इट्स द यूजुअल मंडे ट्रैफिक. देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद एट द मोमेंट. अ 55 मिनट डिले. ट्रैफिक ट्रेनिंग वेरी वेरी स्लो नियर राशिदिया फेस्टिवल सिटी. हैवी ट्रैफिक दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के पास बिजनेस बे एंड डीआईएफसी. अगेन आई हैव टोल्ड यू इट इज पैक्ड. देयर इज आल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक अगर आप हेसे स्ट्रीट में ऑल द वे टुवर्ड्स जेवीसी जेवीटी स्पोर्ट्स सिटी मोटर सिटी तक ट्रैफिक मिलेगा. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
6: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली?
0: तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We're playing the 5 second rule and it's a fun game. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें बतानी होती है 5 second के अंदर. Sounds easy but easy नहीं है. फिलहाल प्रणय on the phone lines. Hi Pranay.
2: Hi Mansi, how are you?
1: I'm good. You sound very very tired.
2: Yeah, it's Monday morning na, that's why.
1: कोई बात नहीं, हो गया. अब तुम गया, मन लगाओ. ट्यूजडे आ रहा है, वेंसडे फिर वीकेंड आ जाएगा. करते क्या आप?
2: मैं रेंटल कंपनी में काम करता हूँ. आई एम वर्किंग फॉर इट कार रेंटल.
1: मेरे जैसे कस्टमर अगर आपको मिल जाए तो फिर आप जरूर हर दिन मंडे जैसा फील करेंगे.
2: I'll be glad.
1: क्योंकि मैं बहुत परेशान करती हूँ. I'm the nightmare for customer service.
2: No, actually I love to talk different people and even if you have more queries, so it seems you are interested, so I am okay with it. I am into sales profile, so it's fine for me.
1: आप लड़कियों से ज्यादा बातें करते हैं कि लड़कों से?
2: You can say both, but yeah, I have more female clientele.
1: समझ ही गई थी मैं तो प्रणय. कंप्लेन भी करते रहे तो ऐसा लगता है कि हाँ करती रहो तुम, बस बोलती रहो, चुप मत हो, है ना?
2: Yes, yes, ये होता है कभी कभी. लेकिन हाँ, कभी कभी जब वो समझते नहीं है तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार मैम यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट.
1: ये देखो, फिलहाल आई विल प्ले द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें 5 second के अंदर.
0: 5 second रूल.
3: ओह यस.
1: Quickly tell me 3 Aamir Khan ki movies because he's trending.
2: Dil.
1: Aur?
2: And 3 Idiots.
1: Time khatam. 5 seconds. You have to be very, very quick. 3 things okay. That you find only at a beach.
2: Water, sand.
1: Aur?
2: And water, sand and...
1: Time khalas. 3 aise jhoot pranay jo aap apne customers se bolte hain.
2: झूठ
1: झूठ है. सर्विस अच्छी नहीं है आपकी कंपनी की?
2: है अच्छी सर्विस, बट समटाइम्स लाइक इट हैपेंस, लाइक सी ग्लिच तो होता है हर कंपनी में थोड़े बहुत, लेकिन बट कस्टमर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग.
1: आई लाइक हाउ हाउ ऑनेस्ट यू आर. 3 things दैट यू नोटिस इन अ गर्ल.
2: आईज, फेस एंड नेचर.
1: ये देखो, ये एक लौता जवाब है जो प्रणय ने टाइम पे दिया. ये सारा दिन लड़कियों से बात करता है ना, इसलिए दिस वाज द ओनली आंसर ही गिव मी ऑन टाइम.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: खेला तो आपने खराब प्रणय, बट आई हैव टू गिव इट टू यू फॉर योर ऑनेस्टी. एंड आई होप ऐसी फीमेल कस्टमर्स आपको कॉल करते रहे, आपका काम चलता रहे, आपका दिल लगा रहे. आई होप यू हैड फन टू.
2: थैंक यू सो मच. एटलीस्ट नो डेफिनेटली, बट I am being very honest, like even for my job also. It's not like even अगर मुझे कभी भी कुछ मेरे बॉस भी बोलते हैं कि इट्स ओके यार सेल्स में चलता है, आई स्टिल यूज टू से नहीं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं. अगर कुछ भी होता है, बट आई यूज टू से ट्रूथ ओनली, बिकॉज क्योंकि वो मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर काम आता है.
1: बहुत बढ़िया. कोई अगर आप जॉब वॉब ढूंढ रहे हो तो लोगों को पता है आप क्या करते हो, किसी ने सुन लिया होगा, तो प्लीज गेट इन टच विद प्रणय. इन्होंने इमीडिएटली अपने स्किल्स बता दिए हैं. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.
2: थैंक यू सो मच. सेम टू यू.

0: हवा के बाद मेरी आवाज सुनते हैं 5 से 9। गुड इवनिंग, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी एंड व्हेन आई कम बैक योर चांस टू विन एक स्टेकेशन, वो भी सह परिवार, फुल फैमिली स्टेकेशन इट इज। एंड इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्विकली रजिस्टर BSS, दैट इज बिग समर सरप्राइज, योर नेम टू 0543091062।
1: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन। Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Rasal Kaima.
0: एंड बहुत सारे लोग जो है उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं। कॉल मत करो, व्हाट्सएप करना है टू रजिस्टर। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आवर रैंडमाइजर इज गोना पिक टू ऑफ यू, जो आपस में यहाँ कम्पीट करेंगे। तो जरा स्पेलिंग वेलिंग जो है रिवाइज कर लो। हुएवर विंस, ए इज गेटिंग इनटू द ड्रॉ फॉर द स्टेकेशन एंड बी इज वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स। सो गेट सेट मैसेजिंग। फिलहाल कमिंग अप ब्रेक के उस पार। Big Thrill, मैं हूं मानसी।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए. GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही. 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, 7:09।

0: 40,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill and this is your chance to beat the heat in style, chill by the pool, enjoy some yum food and that too absolutely free. A family staycation aapka yahan intezaar kar rahi hai. The property is stunning. I'm talking about the Rixos Almarid in Russell Khema. Very, very simple. Ye sab jeetne ke liye aapko register karna zaruri hai. BSS, that is Big Summer Surprise. Apna naam to 0543091062. Randomizer jo hai wo kaam pe lag gaya hai. Do naam jo hai in about 5 minutes. Randomizer is going to pick. So if you haven't registered yet, do it right away. Aasham, it's going to be a spell battle.
1: Participate in the spell battle contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almarid Ras Al Khaimah.
2: So we'll play the spell battle here. Whoever wins, aapka naam draw mein jayega for the family staycation. Plus, you're walking away with the open couple movie tickets and F&B vouchers. The school mein, jiske paper mein kam red मार्क्स होते थे, टीचर ज्यादा मिस्टेक्स नहीं निकालती थी, तो मतलब ये गेम आप ही के लिए. आपकी स्पेलिंग कमाल है तो बस फटाफट रजिस्टर करो. नहीं भी है तो कोशिश कर सकते हैं. यू नेवर नो, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स रिलेटेड टू हॉलीडे, टू समर्स, टू वाटर स्पोर्ट्स. बट सब करने के लिए पहले रजिस्टर करना जरूरी है. इन अबाउट 5 मिनट्स, लेट्स सी हु इज वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स राइट हियर ऑन बिग 106.2. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.

0: एस सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
4: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
5: बिंदी बड़ा क्यूट नाम है, और आप आवाज में मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी, क्या करते हो बिंदी?
4: थैंक यू
5: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं खीकी करके। इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है बताओ मुझे।
4: वो एक जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी, और बोल्ड सामने बोल देती है,
5: अच्छी बात है ना वो तो
4: अच्छा है। हाँ, वो अच्छी लगती है बात।
5: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना।
4: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, पर इतनी मूवी नहीं आई।
5: इतना सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है सौरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप।
4: जहाँ नहीं जरूरत वहाँ भी बोल देती है।
2: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: Hey, जल्दी हटा, तेरा खटा ना। चल हटा। अरे जल्दी हटा।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: All right, patchy traffic, not really big if you're on the Hesse Street, especially if you're going towards Sports City, तो एक 10 से 12 मिनट का delay, which is nothing. Still slow moving traffic, शेख जायद पे 42 मिनट delay अभी भी आपको मिलेगा. Heavy traffic ने उद में था, मनकूल करामा साइड. Traffic चलिंग very, very slow, Murif to Muhesna and Adelhammer, Rashidia, again a 35 to 40 minute delay until Festival City. Anything else you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पे.
2: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And जैसा आपने अभी सुना, कल्पना जी जो है वो हो गई है शॉर्टलिस्ट फॉर दिस अमेजिंग फैमिली स्टेकेशन. इट्स अ स्टनिंग प्रॉपर्टी. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिक्सोस अल मरीद इन रसल खेमा. इन फैक्ट शी ऑल्सो वन ओपन मूवी टिकट्स courtesy of Walk Cinemas and F&B vouchers. यू कुड बी नेक्स्ट एंड ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर करना है BSS 0543091062 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. तो BSS अपना नाम लिख के भेजना है. बिग सम सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय अ प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अल मरीद इन रसल खेमा. डू नॉट फॉरगेट, कल बी वंस अगेन आई विल बी प्लेइंग द स्पेल बैटल हियर. एंड आपके पास मौका है शॉर्टलिस्ट होने का इन द लकी ड्रॉ एंड ऑल्सो टू विन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. बट ये सब करने के लिए एक व्हाट्सएप करना जरूरी है टू रजिस्टर. Once again, repeating our WhatsApp number, it's 0543091062.
0: Big 106.2.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने कैसा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. मैंने किया नहीं है लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि बड़ा thrilling and exciting होता है when you gate crash a wedding, especially when you're in college. बहुत सारे मेरे भी friends हैं जिन्होंने शादी में जाके free के गुलाब जामुन और ice cream खाई है. But Bangalore के एक techie ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है. उसने QR code जो है वो scan करने को कहा for every single guest जो उसकी शादी में आ रहा था. एंड उसके बाद आधार कार्ड भी चेक हुए हैं सो दैट बिगानी शादी में आके लोग बिरयानी ना खाएं. बिकॉज उसका कहना यह है कि केटरिंग का प्राइस देखा आपने, एक एक प्लेट के मैं 1500 रुपए दे रहा हूं, तो आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल. बट डू यू रिमेंबर गेट क्रैशिंग अ वेडिंग एंड हाउ इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? देयर इज अ पोस्ट व्हिच आई पुट ऑन इंस्टाग्राम, सो डेफिनेटली गो एंड मुझे बताइए अगर आपने करी है कभी भी गेट क्रैश कोई शादी फ्री के खाने के लिए. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल.

0: नमस्ते।
1: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
0: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 34 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 32। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 66% पर।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: द बिग जेल where every song feels like a deep breath after a long day only on big 106.2 the beat of bollywood